का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं और हर एक इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार अबीन, यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। और आप सभी सुनने वालों को मालूम है भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की सर ये सुंदर भजन हरि हरन की आवाज में पेश की गए सुबह सुबह लो शिव का नाम। अभी आपने सुना सुंदर सा भजन जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम में अगला भजन जो पेश होगा नरेंद्र चंचल की आवाज में एक सुंदर सा माता जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो ये सुंदर भजन उस प्रोग्राम में नरेंद्र चंचल की आवाज में, नरेंद्र चंचल की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है, तो चले ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में मिलकर सुनते हैं।

दर्शा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए रेडियो SBS का भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर भजन जो सोनू निगम की आवाज में पेश किया जा रहा है। हमारे सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है आप सभी के तार के लिए लाख लाख धन्यवाद। सभी को शुभ सुबह शुभ दिन भी पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।

निगम की आवाज में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए जरूर।

विवेक की आवाज में सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीस की गए है। चले यहाँ से प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में श्री महालक्ष्मी आरती बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का नाम, कमल खान, कुमार सानू, अलका, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज में। और गाना का बोल है ओ प्रिया ओ प्रिया, कहीं प्यार ना हो जाए।

जुबिन एन नीति मोहन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए 2-32-62-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में। 66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में।

ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और चले अब की बार कुमार सानू एनाल का जी की ओर, किसी से तुम प्यार करो कहीं देर ना हो जाए। कुमार सानू एनाल का हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम अंदाज़, एक फिल्म जो 2003 में

कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर जो 4 होता है उस पर आप कार कीजिए और सभी इन्फॉर्मेशन लीजिए 0325656560 पर या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। उदित नारायण और अनुराधा पोटवल, फिल्म का नाम कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने कहा फिल्म का नाम।

एडवांस में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुने वालों की सेवा में। कुछ दिल ने कहा फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है और आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। एक बार फिर से उदित नारायण और साथ में

उदित नारायण और अलका जी की आवाज में गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है, उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत नख में प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले शान और संजीवानी की आवाज में ये गाना।

गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम सुनाई देता है और जिस तरह से भी आप सुनना चाहेंगे आप हमारा ये रेडियो SBS का प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ इस तिहारे जरूरी खबरें रिक्लाम के लिए टेलीफोन नंबर है 03025656660 या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। आपको खबर किया जा रहा है रेडियो SBS का कंतूर का टेलीफोन नंबर जो है 24 घंटा लगातार आप सभी के लिए होता है। और आपको भी खबर किया जा रहा है जरूर आप तार कीजिए हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन्फो लेने के लिए। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में अबकी बार पेश किया जा रहा है। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली है। गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी लता मंगेशकर की आवाज में, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

विशेषकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आज की प्रोग्राम में जो अभी आपने सुना। हमारे सभी सुनने वालों को वेलकम कहा जा रहा है। जिन लोग प्रोग्राम को इस वक्त सुनते हैं और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, किशोर कुमार एंड आशा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार फिल्म जवानी दीवानी, उसी खास फिल्म का गाना की ओर किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में किशोर और आशा जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम यादों की बारात, सॉन्ग बाय किशोर एंड आशा।

खूबसूरत प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए किशोर दाशा जी की आवाज में ओ मेरी सोनी। फिल्म यादों की बारात उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई है। तो उसी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, अपना अपना रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। टेलीफोन नंबर है स्टूडियो का 03-2-62-66-66-11।

हरी कसम फिल्म का नाम आशा भोसले और मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना आज की प्रोग्राम में किशोर एन आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम है जुदाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार आप सुनते ही रहना। 1980 का फिल्म है, फिल्म जुदाई, गाना जो अब की बार आप सुनेंगे मार गए मुझे तेरी जुदाई, सॉन्ग बाय किशोर कुमार एन आशा भोसले। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

क्या की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मार गए मुझे तेरी जुड़ाई। खूबसूरत प्यार भरी गाने रेडियो SBS के जरिए बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले सुमन कल्याणपुर एंड मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी

0: सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक बार फिर से मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।
1: जब से आंखें हो गई तुमसे चार,

रेडियो SBS के जरिए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर किशोर एन लता जी की आवाज में।

गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, एक गाना होगा एडो फिल्म अपने अपने, सुरेश वतकर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और लता मंगेशकर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो बैठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना और प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है एक और खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

यूएस में इसकी जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आस का पंछी, उसी फिल्म का गीत भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए हैं। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। हम आपको ले चलेंगे फिल्म बासी की ओर। गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

में गाना पेश की गई फिल्म का नाम था बांसी। गीता दत्त के बाद मोहम्मद रफी, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो वेव्स पे इसकी जरिए
1: मेरी जान जाए आए।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। फिल्म का नाम अनमोल घड़ी, अनमोल घड़ी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। नूर जहान की आवाज में ये गाना आप सुनेंगे जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

पेश की गई फिल्म का नाम अनमोल घड़ी है। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में हम आपको ले चलेंगे अब के बार मुकेश जी की ओर। फिल्म का नाम तीसरी कसम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था तीसरी कसम। अब की बार हम आपको ले चलते हैं स्वर्गीय हेमंत कुमार की ओर, और हम आपको ले चलेंगे 1962 का फिल्म का नाम 20 साल बाद।

बाद गाना पेश की गई स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश प्रोग्राम में

पूरे सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद हम आपको ले चलेंगे किशोर कुमार की ओर। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म गति पतंग का गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म गति पतंग सॉन्ग बाय द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार।

गति पतंग का गीत पेश की गए किशोर कुमार की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम द थ्रे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज पर द फिल्म द ट्रेन का गीत पेश की गई। हजरों भी थे, गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना।
1: आओ ओए ट्विंकल ट्विंकल।

टिन, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। खासतौर पर दलित मनोज कुमार का खास फिल्म है फिल्म पूरब और पश्चिम जो प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में फिल्म संगम की ओर।

रेडियो SBS के जरिए फिल्म संगम का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आसरो मीठे गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है मुकेश और आशा जी की आवाज में। अब की बार ये गाना हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो।

बुकिंग हो रहे हैं आशा जी की आवाज में। ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में और फिल्म का नाम साथी, 1968 का फिल्म, 1968 का फिल्म है, फिल्म साथी, उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में।

का गीत पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और लता जी की ओर, और फिल्म अदालत का गीत पेश होगा तुमसे दूर रहकर।

0: Je luistert nu naar Radio SBS.
1: सुनने वालों 11 बजकर प्रोग्राम में 11 मिनट वैधित हो चुका है। शुक्रवार का दिन 8 तारीख मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।

पूरे सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव शहर उत्तराखंड से बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो 24 घंटे आप सभी के लिए बराबर होता है 0302-65-65-60। एल्बम में से ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने

SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए प्रोग्राम में अगली बार ये खास गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये गाना भी एक एल्बम में से निकाला हुआ गाना है।

अनुराग की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलते हैं सिद्धार्थ के आवास में।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ गाने एल्बम में से निकालकर आप सभी के लिए आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले मधु की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: प्यार ना
1: सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है।

रेडियो SBS के जरिए जुनिता गांधी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अल्ताफ सईद के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

ही सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रेया घोषाल और शान की आवाज में। ये गाना जो पेश किया जा रहा है,

रेडियो SBS की जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अदनान सामी और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की सर ये उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में पेश किया जा रहा है

0: दिवस प्रोग्राम भी पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की ओर।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार

32 62 66 11. Our Radio SBS website radiosbs.nl. किशोर कुमार के बाद मुकेश एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे किशोर और लता जी की आवाज में, जो पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम गंगा की लहरें।

किशोर और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए अब की बार मोहम्मद रफी की और मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। उसी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, मोहम्मद रफी के बाद हम आपको ले चलेंगे दिलीप कुमार और विजयंती माला का एक खास फिल्म की ओर। गंगा जमुना फिल्म का नाम है, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में पुरानी फिल्म गंगा जमुना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई है। 1961 का फिल्म है, 1963 का फिल्म, फिल्म गंगा जमुना, जिसमें दिलीप कुमार और विजयंती माला ने काम किया है। तलत महमूद जी की आवाज में अगली बार ये गाना पेश किया जा रहा है, से रामचंद्र का संगीत पर

पुरानी फिल्म घराना का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। जब से तुम्हें देखा है आंखों में सिर्फ तुम ही तुम हो। रेडियो SBS के जरिए ये खास गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर, अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम घर। किशोर एंड लता।

0: अच्छा जी की आवाज में ये खास गाना भी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। किशोर कुमार
1: बराती चल दिए दूल्हा बेचारे रह गए।
0: किशोर कुमार की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

हर जगह से नमूने मंगाए गए, सात घोड़े गधे सब बुलाए गए, हर जगह से नमूने मंगाए गए, सात ऐसी शक्लें जी

ये भले ढींगा मुश्ती हुई खूब झगड़े हुए आधे लूले हुए आधे लंगड़े हुए धूम धड़क काजी कपट्टा बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक बमचिक ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े सारे अरमान शादी के ठंडे पड़े ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े ऐसे घूसे लगे ऐसे डंडे पड़े घूसे डंडा दे घूसे डंडा दे घूसे डंडा दे बाप दौलत लूटा हाथ।

0: बाले इकड़े बाबा हो बाली बहु इकड़े पापा लो बाली बहु
1: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए आपने सुना किशोर कुमार के बाद हेमंत कुमार प्रोग्राम में।

स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार लता जी की आवाज में एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमणाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमणाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd. Surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

मैं आज्ञा चाहता हूं, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है सोने दो, दिल कह रहा है कुछ होने दो।

रहना है तेरे दिल में, बस आउट द फिल्म मुझे कुछ कहना है, एंड आउट द फिल्म काबिल कॉम्ट काबिल हूँ मैं, खुजों दो जुबेन नौटियाल एंड पलक मुच्चल।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। ये बेहतरीन गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेस से, और अब आप सुनिए कूली नंबर वन से कुमार सानू और अलका याचिक की आवाज़ में, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ।

0: शुभ मंगल सावधान से आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज में मेरे लिए तुम काफी हो। और अब आप सुनिए परदेसिया ये सच है पिया द रीमिक्स।
1: परदेसिया ये सच है पिया।
2: Yo, listen out there!

0: आनंद बाबू।
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इसके सॉन्ग दो लता मंगेशकर एन कॉम्ट आउट द फिल्म वक्त। गाँव दा फेर्दर मैट आउट द फिल्म गुंजन सक्सेना। गजों दो रेखा भारतवाज कॉम दोरी टूट गईया।

मेरे चंदा मेरे नन्हे, आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आखिरी खत से। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में। चौधवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये बेहतरीन गाना आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम न मारो तो तुमको कसम, was uit de film Chorie Chorie en is gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। इस सॉन्ग अदूर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंकवाम द फिल्म जवाने जाने मन एंड द फिल्म अभिमान कॉम्थ सॉन्ग अदूर लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे।

गली गली में फिरता है. इस सॉन्ग दोराल का याचनिक एंड पप्पी लहरी एंड क्वाम आउट द फिल्म त्रिदेव एंड आउट द फिल्म हलियाली और रास्ता कॉम्प्ट बोल मेरे तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता.

आज रपट जाए तो हमें ना भुलाइयो इस द फिल्म नमक हलाल एंड इश्क सोहदोर किशोर कुमार एंड आशा भोसले. Uit de film Pagelpanti komt dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Yo-Yo Honey Singh komt Tumka.

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।

0: बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। हुसैनुद्दीन जगजीत सिंह एंड अलका याज्ञिक heeft u gehoord uit de film Terkieb. En uit de film Sare Sipne komt opnieuw gezongen door Alka Yachnik deze keer. Zara zara si baate, teri mujhko yaad aati hai.
3: Haseen lamhe, shareer lamhe, sharmile lamhe, jhijakte lamhe, pighalte lamhe, dhadakte lamhe. मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।